समाए, तिस की कीमत कही न जाए, आख आख रहे सब लेब लाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए, अगम अगोचर लखिया ना जाए।

0: बिना दुख भी अप जन्म मरण नांत रिद सिद्ध सुधार से अमृत भगत परे भंडारा बिन मंत नानक बल हार वन्या पार ब्रह्म प्राण आधारा सुन सखियो सहेलड़ियो मिल मंगल गावा राम मन तन प्रेम कर तिस प्रभु को गावा राम कर प्रेम गावत से पाव
1: कोई जैसे पुराण पात रहे जल समीप मन रबदास जन्म जग हुए बाणी सदने की राग बुलावलो एक ओंकार सतगुरु प्रसाद निरपकन्या के कारण एक भया भीख धारी कामारती स्वार्थी वागी भैज सवारी तब गुण कहा जगत गोरा जो कर्म ना नाशै सिंह शरण कत जाइए जो जम्ब को ग्रासै रहाओ एक बूंद जल कर ने चात्रक दुख पावे प्राण गए सागर मिले पुन कामना आवे प्राण जो था के थर नहीं कैसे बिरमावो बूढ़ मुए नौका मिले कह काहे चढ़ावो मैं नहीं कछो नहीं किस आहे न मोरा अवसर ल जा राख ले हो सतना जन तोरा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंगुर प्रसाद राग गुंड चौपदी महला चौथा घर पहला जे मन चित आस रखें हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किसी जो जी वरतै प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाई हर तिसकी आज की जयमन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई मेरे मानो आशा कर जगदीश गोसाई जो बिन हर आस अवर कहूँ की कीजे सा नह फुलास सब व्यर्थी जाई रहा जो दिशे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनके किस हाथ नहीं कहाँ करें ए बपड़े इनका बाहया कसना बसाई मेरे मनाज कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तार है तेरा कुटंब सब छुड़ाई देख सास अवर करें पर मित्री मत तू जाने तेरा कितने कम आई ये आस पर मित्री भाव दूजा है खिन मैं झूठ बिंज सब जाई मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साची की जो तेरा घालिया सब थाए पाई आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आज करावें तैसी को आज कराई किस किसी के हाथ नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुर बूझ बुझाई जा नानक की आस तू जाना हर दर्शन देख हर दर्शन त्रिपताई गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है जो खिन मैं केले वेख सब करे बिनाशा जे हर त्याग और की आज की जय ता हर नह फल सब का हाल गवासा मेरे मानो हर सेव सुखदाता स्वामी जिस सेव्या सब भुख लहासा मेरे मन हर ऊपर की जय प्रभाषा जय जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरे अपनी पैज रखै जन दासा राव जे अपनी बिरथा कहूँ अबरा पै ता आ गए अपनी बिरथा बहुत बहुत कढ़ाशा अपनी बिरथा कहूँ हर अपने स्वामी पै जो तुमरे दुख तत्काल कटाचा सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी व्यर्था अवरा पै कही है अवरा पै कह मन लाज मराचा जो संसार के कुटुंब मित्र भाई दिस है मन मेरे ते सब अपने सुहाए मिलाचा जित दिन उनका सुहाओ हुए ना आवे ਤਿਤ ਜਨ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸ਼ਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੋ ਤੁਧ ਉਪਕਰੈ ਦੁਖ ਸੁਖਾਸਾ ਤਿਸਕਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਰੱਖਣਾ ਸੁਖਾਸਾ ਹਰ ਜਪ ਮੰਤ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਪੋ ਤਿਨ ਅੰਤ ਛੁਡਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਚਿਤਾਸਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਅੰਦ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਸੰਤੋ ਇਹੋ ਛੂਟਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਗੁਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ੀਤਲ ਮਨ ਆਪਣਾ ਜੈਸੇ ਸਖਤ ਸੂਰ ਬਹੁ ਜਲਤਾ ਗੁਰ ਸਚ ਦੇਖੇ ਲੈ ਜਾਏ ਸਭ ਤਪਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਿਨ ਧਿਆਏ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਝ ਰੱਖੈ ਸਭ ਠਾਈ ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਸਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਾਉ ਜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸੋ ਹਰ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹੋ ਹਰ ਰਤਨਾ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਮਾਲ ਹੋ ਹਰ ਦਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਰਾਮ ਰਸ ਭਾਵ ਉਤਮ ਸੰਤ ਭਇਓ ਵੱਡ ਵਡਨਾ ਤੇ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰੇ ਆਪ ਵਧਾਈ ਉਹ ਘਟੈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਕੀ ਘਟਾਈ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਿਲ ਤਿਲ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੋ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਨਿਤ ਕਰ ਜੁਰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਹਰ ਦਾਨ ਇੱਕ ਦੀਜੈ ਨਿਤ ਬਸੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰੀ ਮੋਹੇ ਚਰਨਾ ਗੁਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਤਨੇ ਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਾਬ ਸੁਖਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠ ਭਾਓ ਦੂਜਾ ਜਾਣ ਹਰ ਅਵਨਾ ਸੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਿਚਲ ਤਿਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਹਰੀ ਭਜ ਸਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਹਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਦਾ ਤਾਣ ਰਾਓ ਜਿਤਨੇ ਤਲਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਮਿਲਕਵੰਤ ਦੀ ਸੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਬਿੰਸ ਜਾਹੇ ਜਿਉਂ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕੁਚਾਣ ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਦਾ ਸੇਵ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤ ਹਰ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਤੂੰ ਮਾਣ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੂਤ ਵੈਸ ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਉਂ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਫਸੈ ਹੈਡ ਬੱਪੜਾ ਤਿਉਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਮਿਲ ਪਤਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਤੇ ਸੂਚਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤਿਜਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ ਜੋ ਹਰ ਜਾਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਸੇਵਕਾਣ ਗੁਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਤੈ ਵਰਤੈ ਜਿਹਾ ਹਰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕੋ ਕਰਈਐ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਧਨੋਂ ਸਭ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਈਐ ਹਰ ਬਿਨ ਕੁਮਾਰ ਜਵਾਲ ਨਾ ਸਕੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੈਦ ਕਢਈਐ ਰਹਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀਆ ਸਭ ਕਰਤੈ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰਈਐ ਹਰੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਏ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰੇਕ ਦਿਖਈਐ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਕਹੋ ਤਿਜ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਕਿਆ ਚੁਰਈਐ ਨੈ ਕਪਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਈਐ ਜਿਹਦੇ ਬਸ ਸਭ ਕਿਸ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਤੁਧ ਲਏ ਛਡਈਐ ਗੂੰਡ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ ਹਮਰੀ ਵੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ਰਹਾਉ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰ प्रभ के ले सतगुर की मत तीर मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आज पुजावो हर दर्शन सांत शरीर रंग राग गूंड महला पंजवा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता राव संतो करता पीकत करता आदृष्टो करता दृष्टो करता उपत करता परलो करता व्याप्त करता लिप्तो करता भक्तो करता भूजित करता आपत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुरप्रसाद नानक साम दृष्टा गुण मोहला पंजवा भाक्यो मीन कबक की न्याय तू उर्ज रहो कुसुम पाइले पग तारा सास लेखे लै ता उधर हर गुण गायले मन समझ छोड़ आवैले अपने रहन को ठौर न पावे काय पर कह जैले रहाव ज्यों मैं गल इंद्री रच प्रेरियो तू लग पर्यो कुंडम पहले कुटम भैले ज्यों पंखी एकत्र होए फिर विचरै तिर संगत हर हर त्याले जैसे मीन रचन साध बेंसियो हो मूठो मुड़लो पाइले तू हो आ पंच पास बैरी कै सूटें परसर नायले हो कृपाल दीन दुख भंजन सब तुमरे जी जनताइले पावो दान सदा दर्श पेखा मिल नानक दास दिसाइले राग गोंड महला पंजवा चौप दे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब कुछ भोजन पोवाए सो प्रभु ताज मूड़े कत जाए पराब पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजय निरंजन देव राहो जिनकी रंग अनक प्रकार उपत परलो निमुख मजार जा की गति मित कही ना जाए सो प्रभु मन मेरे सदा ते आए आए न जावे न चलते नी बेअंत गुना ताके कीर्त गगनी लाल नाम जाके परे भंडार शुकल कटां देवे आधार सतपुरख जाको है नाम मिटें कोट अग्निमुख जस गाव बाल सिखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गुण महला पंजवा नाम संग कीनो व्यवहार नामो ही
2: वाहिगुरु
1: इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम जपत मिटें पाप कोट राज दी हरे को नाम मन का इट गुरु संग ध्यान राव नाम हमारा जी की राज नामो संगी जरकत जात नामो ही मन लग मीठा जल थल सब मैं नामो डीठा नामे धर गए मुख उजले नामे सगले कोल उधरे नाम हमारा कार्य सीध नाम संग मन मंगीद नामे ही हम निरप पे नामे आवन जावन रहे गुरपुरे मिले गुण दास को नानक सुख सहज निवास गुण महला पंजवा माने को जो दे तो मान सकल भूखे को करता दान गर्व को मैं राखन हार तीर्थाकर को सदा नमस्कार ऐसो ब्रह्मान माहे ते आए घटे घट जत कत सहाय राव रंक राव जाक एक समान पीठ हत सगल पुराण ये पूछना मसल तर मसलत तर जो किस करे सो आप

0: पातत झांके संग उदार। एक
1: गाहे गुरु
0: नाम आधार धर्म जी का जाना पे हो कृपा नंदन देव और ब्रह्म जप है कृपाल तब पीटे गुरु साध दयाल देर रहन नानक नाम ते आए सुख सहज आनंद हर नाय गुण महला पंजवा गुरु की मूर्त मन में ध्यान गुरु कह शब्द मंत्र मन मान गुरु के वचन हृदय लै
1: अमृत बाणी
0: मन को परम को लै संसार गुरु मन को एता उत्तर च पाराओ उले

0: क्रोध लोभ मोह न पोहे, साध संग जपै निरंकार, निंदका मोह लगे शा, राम कोच दास का सुनाहो,
1: तन धन जोवन नाहीं।

0: बिसरयो गोविंद नाम, कहु नानक बिनु हर भजन, जीवन कौने का,
1: देखो
0: प्राणी राम न चेतई।

0: जाना वेद दे पर मैं नहीं जाना
1: बिरथा सब ही मान
0: अपनी कथा पे जाना है
1: करणो हो तो सोना कियो
0: कोई हरे देव देवी
1: परे ओ लोभ के फंदा नानक समयो रम गयो
0: अपने की आप
1: अब क्यों रोवत अंदा मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीता नानक मूर्त चित्र ज्यो शाडत नाहिन पीता
0: रदना बदना सत प्रकाश
1: नर चाहत कछे और की और पही चितवत रहे उठ गौर नानक फांसी गड़ परी जतन

0: जाते तुम
1: सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग दाता सोए भगत बच्छल ते हलोए जियो गुरु शब्द समावे अवरना जाने कोए जियो अवरो न जाने शब्द गुर का एक नाम ते आवहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोर ठाकुर भक्त ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभु पास जियो। सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो।
0: राम करी महला पहला
1: पैज राखो हर जन है केरी हर दे हु नाम निरंजन।
0: चन चढ़ाए से तारे सोई दिन
1: अंत चलदे आ होए बेली जम दूत काल निखंजनो।
0: पाव कैसी
1: सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभु सुनी अरदास जियो। हर तार कृपा सतगुरु मिलाया धन धन कहै सबास जियो।
0: दाता दान करे
1: मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभु करे सबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभु भाणा पावे आनंद अनहद बधै वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाना फिरे नाही गुर जाए हर प्रभु पास जियो। सतगुर पहने अपने बै परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल न पाया। मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु प्रताख होदै बैराज आप टिकाया सब सिख बंद पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्माण जियो। केशो गोपाल पंडित सदे हो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे। पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सो जान जियो। रामदास सोदी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो। मोरी पुत सन्मुख होया रामदास है पैरी पाए जियो। सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली नवे नाही फिर सतगुरु आण निवाया। हर गुर है पाणा दी वड्याई तुर लिखिया
0: हरे नाम सुमाई
1: कहे सुंदर सुनो संत हो सब जब

जाते दुर्मत सगल विनाशे, राम भगत मन पीजे राओ। मन माया में उर्ज रहो है, बूझे न कुछ ज्ञान, कौन नाम जग जा के सिमरे, पावे पद निर्वाणा। पहे दयाल कृपाल संत जन, तब यह बात बताई, सर्व धर्म मानो तय किए, जय प्रभु कीरत गाई। राम नाम नर निस्बासर में, निमख एक ओर धरे, जम को त्रास मिटे नानक तें, अपनो जन्म सवारे। राम कली महला नौमा, प्राणी नारायण सोधले, छिन छिन औंद कटे निस्वासर, विरथा जात है नेराओ। तरना पो विखियन स्यों खोयो, बालपन अज्ञान, विरद पयो जो नहीं समझे, कौन कुमतुर जाना। मानस जन्म दियो जय ठाकुर, सोते क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा के सिमरे, निमख तना ताको गायो। माया को मद कहाँ करते है, संग न कहूँ जाई, नानक कहत चेत चिंतामण, होई है अंत सहाई। राम कली महला पहला, अष्टपदियाँ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन अर तप्त रहे, सात आरती जो पौन चलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। जीवन तलब निवार होवे, परवाना रहे तिघाना, कल लखन विचार। रहाओ किते देश ना आया सुनिए, तीर्थ पास ना बैठा, दाता दान करे ते नाही, महलो सार न बैठा। जे को सत करे सो सीजे, तप कर तप न होई, जे को नाओ ले बदनामी, कल के लखणी। जिस सिख दारी तिसे खुआरी, चाकर के हे डरना, जा सिख दारी पवे जंजीरे, ता चाकर हथों मरना। आंख गुणा कल आई है, तिहो जुग केरा कहया तपावस, जे गुण दे ता पाई है। रहो कल कल वाली सरा निवेड़ी, काजी कृष्णा हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद थर्वण, करणी कीरत लह्या। पत बिन पूजा सत बिन संजम, जत बिन काहे जनेऊ, ना वो तो वो तिलक चढ़ावो, सोच बिन सोच न होई। कल परवान कतेव कुरान, पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाओ पया रहमान, कर करता तू एको जान। नानक नाम मिले वडियाई, एदो ऊपर कर्म नहीं, जे कर होंदे मंगण जाइए, फिर उलामा मिले तही। राम कली महला पहला, जग पर बोधे मड़ी बधावे, आसन त्याग काहे सच पावे। ममता मोह कामण हितकारी, ना ओ धूती ना संसारी। जोगी वैस रहो दुबदा दुख पागे, कर कर मांगत।

0: एक पांदे पंडित मिसर कहावे, दुबदा राते महल न पावे, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मदे को जाने अपार। एक बुरा पला सचेक है, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक है, बिरले गुरमुख बिरले को जानिया, आवण जाना मेट समाणिया, जिनके हिरदे एक अंकार, सर्ब गुणी साचा विचार, गुर के पाणे कर्म कमावे, नानक साचे साच समावे। राम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया सीजे, वर्त तपन कर मन ही पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे। जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस न सके, हर का रस पीजे रहाओ, बाद पड़े रागी जग पीजे, त्रै गुण विखिया जन्म मरीजे। राम नाम बिन दुख सहीजे, चाड़स पवन सिंहासन पीजे, न्यूली कर्म खट कर्म करीजे, राम नाम बिन विरथा सास लीजे। अंतर पंचगन को तीरज तीजे, अंतर चोर क्यों साध लीजे, गुरमुख होए काया गढ़ लीजे, अंतर मैल तीरथ पर मीजे। मन नहीं सोचा क्या सोच करीजे, किरत पया दोष कहाँ को दीजे, अन न काहे देही दुख दीजे, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं दीजे। मन मुख जन्मे जन्म मरीजे, सतगुर पूछ संगत जन कीजे, मन हर राचे
1: नहीं जन्म मरीजे, राम नाम बिन क्या कर्म कीजे। उंदर दुंदर पास त्रीजे, तुर की सेवा राम रवीजे, नानक नाम मिला कृपा प्रभ कीजे। राम कली महला पहला, अंतर उत भुज अवर न कोई, जो कहिया सो प्रभ ते होई, जुग है जुगंतर साहब सच सोई। उत पाता पर लो अवर न कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहरा गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर का नाम ना लगा जाम तीर रहा।

तुम्हारी। राम कली महला तीन जाओ अष्टपदियाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सरमे दिया मुंदरां कन्नी पाए जोगी खिंता कर तू दया।

0: जो गवावे अपना तख्त न बैसे से
1: जहां त्रिखा मन तुझे
0: प्रीतम हाथ बढ़िया न जय पावे ता दे आप करे किसे आखे अवर न कोई करे
1: विश्राम हर का नाम
0: बीजो सूझे को नहीं बहेद लीचा पाए नरक निवारण नर नर साचो साचे नाए
1: हर हरे औखद साध
0: वाण त्रिण टूंडत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहुमान की।

सची नाई परखे गुर की बात करे खबर पंज पी काया कड़ा सन मन जगोटी सत्संग कौन सबुता कौन सुमुक्ता कौन सुमंतर बा

अपनी प्रतीत आप ही खोवे और उसका विश्वास न होवे जिसकी अनेक पांत माया की जाने नानक।

0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लगे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जी
1: नद करे हैं शब्द काट में आवाज़ है बिचों पर मंगवाए तन मन निर्मल

पाले उदास अरद उर्द करे निरंजन वास चांद सूरज की पाए गांड ते सुदासी का पड़े न कान बोले गोपी चांद सात स्वरूप पमर दंत मारे कना रूप महला पहला सो पखंडी जे काया पखाले काया के अगन ब्रह्म पर जाले सुपने बेंदना ही चरणा तिज पखंडी जरना मरना बोले चरपट

0: प्रणाम।
1: अति प्यारा पवे को कह संजम करना गुम को होवे सु करे विचार ओह अल्प तो राणा। हर नाम जपे आप उतरे उस पिछे डबदे भी ताना नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो जाना महला पहला।

साहिब मेरा उजला जे को चित करे नानक सोई सेविया सदा सदा जो दे नानक सोई सेविया जित सेविया दुख जाए अगणवंजन गुण रवे मन सुख वसे आहे पौड़ी आपे आप वरता आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पतियायन राम करी की वार महला पैमाए के ओंकार सत गुरु प्रसाद श्लोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीट विछड़िया मेले प्रभु दरगाह का वसीट हर नाम मंत्र लाए दा कटे होमे रोग नानक सतगुरु तिना मिलाया बिना तुरे पया संजोग महला पैमा एक सज्जन सब

सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निम खर के गुण गाए, अनकराज भोग बड़े आए, हर के नाम की कथा मन पाई, भव भोजन का प्रसंगीत, रसनाम जपति हर हर नीत, भली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक

अष्टपदी। जब अकार कशन दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता, जब तहरी अपन सुन्न समाध तब बैर विरोध केस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जाप तब हर्क सो कह कसै व्याप, जावे अपने आप

0: केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हरगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो केत ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै अपन चलित आप करना हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: अंदर विदा सचना
0: तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन
1: आपे की तो रचना
0: अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौन मान कौन अभिमान जय सु केवल जगदीश तय शल शिदर लगत कहो कि इस जय जो स्वरूपी जो संग समाव तय कसै भूख तृप्ताव करन करावन करन हार नानक करते का नाहि सुमाव जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै परमीन तह वेद देव कहा कोटी जब अपने आप आप उर तहारे तव सगने आप सगन कहा बिचारे जय अपनी ऊंचे अपने आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानहु आप जय अशल शेद अपेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया आपस को आपया देश देह गुण का नाही प्रवेश जय के एक भगवंत तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचते उचा नानक आपस कहो आप है पहुचा जय प्रचो परपंच अकार ते हुकुण महकीनों विस्तार पाप पुन्न तह पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछाव ताल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पै दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पसार संप्रताप दोहु पाकाउ आप है तनी उन की शोभा उन हो बनी जो बुलाव हो त्यो नानक दास बोलै

मेले साध सम मिलकर हो आनंद गुण गावहो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करहो विचार दुर्लभ देखा करहो उदार अमृत बचन हर के गुण गाव प्राण तरन काय है सुहावो वाट पैर प्रभ पेखो नेरा मिटा ज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावहो मन विछे नानक फल पावहो हरत पलत दुइले हुसवार राम नाम अंतर उर धार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसाय तस साज परिखिया मन तन नाम जपहु लिवलाय दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दरगह निबह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवह जाहे तिसते दूर कहा को जाए बुरै राखन हार त्याहे निरपहो जपै सगल पहो मिटाए प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख नाम जपत मन होवै सो चिंता जाए मिटाए अहंकार तिस जन को कोई न पहुचन हार श्री ऊपर ठाडा गुरसूरा नानकता के कार्य पूरा मात पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान

सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बेसंतर माहे चार कुंट दहद से समाहे तस्ते बिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत में देख ससेर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोला है आप अडोल न कब हु डोला है।

आस अनित त्याग हो त्रंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरह हर तन के परले भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमा।